0: खुदा की बरकत तुम्हें सदा हासिल हो, उसकी मोहब्बत में कायम मसरूर रहो, आबाद रहे घर तेरा और तरक्की करे तेरी औलादे, भरा रहे हमेशा मखजन तेरा और सर सदा ऊंचा रहे, नाकाम हो सारे दुश्मन तेरे और बर्बाद उनकी साजिशें, हर मुकाम पर खुदा तेरे साथ रहे और उसके नूर में तुम मुकम्मल हो जाए, खुदा की नजर तेरी ओर सदा रहे और वो तुझ पर मेहरबान हो, उसकी हिफाजत में तुम महफूज रहे, जाए जहां कहीं तेरा ठिकाना हो।
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio, TAWH Palau.

आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर। तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे